बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बक्ता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी। बिन बस पंच कहा

गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का

गौरी गंभीर प्रकृति का राग है, विलक दी आत्मा कृपा दी जांचना कर दी है, ते आपे दी खोज कर दी है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन मत बुद्धि आत्मा मौत मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतांत दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखन जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी का गाया हुआ, बोल हन।

स्थिर कर बैसहु हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखणी जे खसमें चित्त।

संस्कृत ग्रंथा विच जय श्री जयंत श्री आदि नामा नाल संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित जयत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अते कठिन राग में शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। जयत श्री का प्रभाव सुख अते खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड हीरे विच रतन नाम नू वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नू मनोरंजक बनाउण लई इस दे स्वरूप विच ईशव धैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जांदे हन। आरोह विच ऋषवत धैवत वर्जित हन। इस दा वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। यह राग दिन दे चौथे पहर गाया जांदा है। राग जैतश्री विच दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। इस नू गा रहे हन बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द दी तुक है कोई जन हर सियो देवै जोर अते दूजा शब्द गुरु रामदास जी दी रचना हर हर सिमरो आगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हन। पहला शब्द कोई जन हर सियो देवै जोर।

चाहिए। सिख ने कड़ी चाली चलनी है जिदे गुरु प्रसन्न हो चाली चली जिदे गुरु की प्रसन्नता मिलनी वो चाली चली दूजी नहीं चली। सिख कदे भी वो चाली नहीं चलता जिदे कलगियां वाला खुश ना हो। गुरु नु खुश करिए प्यारी साहिब संगत, जे दुनिया नु खुश करना चाहते हैं तो गुरु नु खुश करिए। गुरु किस ते खुश होंदा है? जेड़ा गुरु दी चाली चल के गुरु दे हुक्म च रहिंदा। जो भी गुरु का हुक्म, अमृत छकना, सोने दाढ़ी केस रखना, गुरबाणी नाल जुड़ना, सच धर्म दी किरत करनी, सच बोलना, यह है गुरु दी चाली। तो जिहड़ा सिख है वह गुरु की चाली चलेगा। फिर गुरु की चाली केड़ी? हजूर फरमाउंदे हैं।

गुरु सिख का जीवन तैयार कर जो गुरु का हुक्म है वो करन जो भी बाणी नाल जुड़ना सिमरन नाल जुड़ना श्वास श्वास जपना सतनाम जिन्होंने गुरु के हुक्म अनुसार अपने मन को सिमरन में जोड़िया प्यारी सात संगत फिर वाहेगुरू करदिया करदिया सिमरन करदिया करदिया ऐसी अवस्था बन जाती है पहला वाहेगुरू रसना से वसदा फिर मन च वसदा फिर रोम रोम च वस जाता है खुश वाहेगुरु शब्द जो है गुरु का मंत्र रोम रोम च वस जाता है बाणी च आता है गुरमुख रोम रोम हर त्यार जेडे गुरमुख हैं ना जिन्होंने गुरु नु मुख रखिया जिन्होंने मन नु मुख नहीं रखिया जे मन ने कहा भी ये काम कर ले चलो कर लेंगे मन तो गलतियां ना पुतले मन दे आखे नहीं लगना चाहिए जे मन ने कहा भी उन्हें दाढ़ी कटी है तू भी कट लिया खुश

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

की कृपा मुहे करो। एक साखी है सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तैनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया कहन लगा महाराज तुसीं कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसीं कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तैनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसीं कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ए ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो तेरे बख्शिया दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए। साध संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए, ऐसी मंग इस शब्द विच।

मेरे कलगीधर सचे पातशाह दे दरबार विच रब्बी बाणी दा कीर्तन हो रहा है। संगतां बेंत जुड़ियां हैं, बाहरों आईया संगतां हजूर दे चरना ते सीस चुका के मालिक दे दरों दाता प्राप्त करके अपने आप नूं वडभागी बना रहे हैं। पर एक निक्का जिहा बच्चा जिस दे मन विच उत्साह है कि हे माना पहली बारी पूरे गुरु दे दर्शन कीते हैं, ए जिहड़ा शीश है गुरु दे चरणां ते जाके रखना है। आखो श्री वाह, सारे आखो वाहेगुरु। कलगीधर सचे पातशाह दे प्रकाश उत्सव दे प्यारे हो, कोई भी रसना उस अकाल पुरख दे नाम तो वांझी ना रह जाए। जो भी माई भाई इथे आया है, आओ भागा वालियो, अपनी रसना पवित्र करो, सेवक दे कन सफले करो, प्यार नाल सारे गज के आखो सतनाम। अजे भी सारे ने वाहिगुरु नहीं किया तो मेरा चित करता है आज खास बख्शिश वाला समय है। आज दे समय, आज दी रात भागा वाली रात है, जो रब्बी नूर प्रगटिया सी इस मात लोक विच। तो आओ प्यारी साध संगत, उस नूर दे दर्शन करदे होए उस दे नाम नाल जुड़ो। की पता अज दा जपे आया वाहेगुरु सानू सदा वास्ते चेते आ जाए, साड़ी मानू यात्रा सफल हो जाए। बंदी बंदे बंदगी अख्तियार, साहेब रोज धरे के प्यार, मिल जाए ए दात। आओ दाता वंडन वाला दाता आ रहा है भाई, पर पहले तैयारी कर दे करी सारे गज की आखो सतना। उस रसना तो मैं सदके जावा जिसने साई दा नाम जपया है, ओ मुखड़ा भी धन है जिदे विचो निकलिया है सतनाम। निके जे बच्चे दे मन विच फुरना है, जिस वेले सारी संगत ने हजूर दे के मथा टेकिया बैठ गई, तो ये छोटा जिहा बच्चा संगत विचो लंघदा लंघदा लंघदा हजूर दे कोल पहुंचिया, ते इसने अपना सिर गुरु दे चरणा ते रख लिया। दशमेश पिता मेरे कलगियां वाले पातशाह, चिट्टियां बाजां वाले चोजी पातशाह, सारिया दे साझे सतगुरु जी ने नेत्र खोले, तकिया निक्का जिहा बच्चा है ते चरणा ते शीश रख के किसे प्यार च मथा टेक रहे। हजूर ने बड़े प्यार नाल काका ओ बरखुरदार सिर चुक भाई उत्ते कर मथा, पर अज मथा चुकण वास्ते चित नहीं करदा इसका, पर हुक्म पाके सिर चुके है। निके निके हाथ जोड़ ले, फिर प्यार नाल पिया करदा है दर्शन, जिवें चकोर चंद्रमा नूं वेक वेक के खुश हुंदा। हजूर कहन लगे काका कित्थों आए? महाराज तुहाडी बख्शिश द्वारा मैं पिशावर तू आया। वाह वाह, तन पुजंगिया तू तन है, किथे पिशावर ते किथे आनंदपुर साहब, किवें मंदला चाक के तू पहुंचे है।
तेरे प्यार तू कुर्बान जाइए। हजूर बड़े प्रसन्न होए, पिशावर की संगत जिहड़ी आई है उहदे नाल आए हां गरीब राज। अच्छा फिर तेरा नाम की है? तो इसलिए तोतली जबान नाल किया, महाराज मैनू लोकी जोगा कहिंदे ने। आखो श्री वाहिगुरु। तो कलगीधर सचे पातशाह जी ने इन्हें वल तकी है, जोगा हां सचे पातशाह। फिर भाई किवें जोगा है तू? हजूर ने प्यार नाल पुछिया, अपने जोगा, माता पिता जोगा, रिश्तेदार जोगा, आंडिया गुआंडिया जोगा, कुटुंब कबीले जोगा, देश परिवार जोगा, तू किहदे जोगा है? तो प्यारी सात संगत, गुरु के सिख दा मन नीवा ते मत उच्ची मत पद का राखा आप श्री वाहे। निके जे जोगे ने किया दाता जी मैं तो तेरे जोगा, तेरे जोगा। जिस वेले इसने ए वचन कीता तो मेरे कलगिया वाले सचे पातशाह ने एदी बांह फड़ ली। आखो श्री वाहे। तनो गुरु का सिख है जे भी बांह कलगिया वाला फड़ ले फिर छड़ेगा नहीं। बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे न छोड़। तू किसने जोगा दाता जी? मैं तेरे जोगा। हजूर कह लगे जे तू मेरे जोगा तो मैं भी तेरे जोगा। को श्री वाहिगुरु। गल तो इतनी है पर असी गुरु जोगे नहीं बनते, कम्मा कारा जोगे बनते हैं, दुनिया के चवेलिया जोगे बनते हां, रिश्तेदार जोगे पुत्र धिया जोगे बनते हां। भाई भागा वाला वह गुरमुख है जो गुरु जोगा बन गया है। गुरु जोगा अजकल तो साड़ी अवस्था है, सब किस अपना एक राम पराया। गुरु दरबार च मत्था टेकीए चाहे ना टेकीए पर दफ्तर पहला जाना है, क्यों किधरे साहब निराज ना हो जाए पहला चले जाते हैं। भाई गुरदास जी ने लिखे है ना कि सतगुरु साहब छड़ के, भाई साहब भाई गुरदास जी, सतगुरु साहब छड़ के फिर मनमुख होए बंदे का बंदा, बंदे का बंदा तो बनना है पर अमृत वेले आके गुरु दरबार च हाजरी नहीं भरदा। फिर हुक्मी बंदा होए के नित उठ जाए सलाम करदा, गुरु के मत्था नहीं टेकदा, अफसरां के अदावर्स करदा है, फिर पूरी ड्यूटी देंदा। ते जे गुरुद्वारे पांच मिनट ज्यादा हो जान बस चलो जी चलिए हुण इत्थे की बहना है, अवल तां आउणा ही लेट है। जे कीर्तन 7 बजे शुरू होना है ते आउणा ही 8 बजे, ते सैनमा जाना होवे शो 7 बजे शुरू होंदा है पहले ही जाके 6:30 बजे बारी खलो जाने। तैयार कहदा होया जे पहले ही आके ना जुड़िया गुरु का सिख इस इच्छा विच के मेरा धन गुरु नानक मेरे ते अमें उदिष्ट करे, रबी बाणी दा अमृत मेरे कन्ना विच पवे, मेरी मानू यात्रा सफली हो जाए। झूठे सैनमा तो भज भज के वेखदे पर बाबा जी बचन करते सन भाई ए सच्चा सैनमा, उथे भैड़िया मूर्तां इथे गुरु नानक दे दर्शन, उथे गंदे गीत कन्ना च पैंदे ने इथे गुरु नानक दी बाणी, उथे पैसे जाया जाते हैं इथे तन दान पुन कीता भाई सफला होंदा है, जे को पावे तिलका मन, उथे समा जाया इथे जितना समा बह जाओगे। कबीर जी कहंदे ने एक घड़ी आधी फुन आदि भगतन सेती गोष्टे जो की ना सो लाभ। अरे लाभ कौन प्राप्त करे करी पढ़िए।

आप संगत में बैठे हैं, यहाँ का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे हुए।

चरण लाग हम बिन बता। पूछत कह जी उपाया कवन का जग उपजे बिन से कहो मोहे समझाया। भगत कबीर जी का शब्द है। इस शब्द दे विच जो विचार साड़ी कल चल रही सी सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाने। महाराज जी आखदे नानक कहे और नहीं दूजा साच शब्द मन मान्या। कहंदे हन साड़ियां निगाहां च होर कोई दूसरा प्रवान नहीं है, सिर्फ ओयो ही बंदा प्रवान है जिसने अपने आप नूं पछाण लिया है कि वह कौन है। चाहे वह गृहस्थी होवे चाहे वह सन्यासी हो, वो बहुत वड्डिया भागां वाला है, धन भागी है, बहुत महान है जिसने अपने इस जीवन दे विच अपने आप नूं पछाण लिया। तो महाराज जी आखते हैं आप पछाणो तां शह जानो। शह मैंने अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने आप नूं पछाणोगे तां ही वाहिगुरू नूं पछाणोगे, क्योंकि साडा अपना आपा अते वाहिगुरू एक ही है। अपने आप नूं पछाणन दा मतलब अकाल पुरख वाहिगुरू दी प्राप्ति, अकाल पुरख वाहिगुरू दी पहचान है, उस दा मिलन है। तो जिसने रब नूं ढूंढना है, जिसने रब नूं पाना है, उसनूं बाहर जाण दी जरूरत नहीं है, उसनूं अपने अंदरों उसनूं लभना पएगा। सारी गुरबाणी दा सिद्धांत इस असूल दे उत्ते टिक्या पिया है। अकाल पुरख वाहिगुरू नूं प्राप्त कीते तो बिना इस जीव दी गति नहीं हुंदी, इह शांत नहीं हुंदा, इसनूं टिकाओ नहीं आउंदा, इसनूं खेड़ा नहीं आउंदा, इसनूं तृप्ति नहीं आंदी। अकाल पुरख वाहिगुरू नूं विसरन नाल इसनूं खुआरी हुंदी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा ईरखा वैर विरोध आदि अत्यंत मानसिक बीमारियां इसनूं खा जांदियां हन, इसके जीवन नूं जहर बना दिंदियां हन। अते जदों परमेश्वर जिंदगी च भुल जाए उदों महाराज जी आखदे हन सारे रोग आ चुमड़दे हन।

परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सब है रो तो परमेश्वर की प्राप्ति अकाल पुरख वाहिगुरु की प्राप्ति और सृजनहार की प्राप्ति साडे जीवन का सब तो अहम सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मनोरथ है। महाराज जी आखते हैं जन नानक बिन आपा चीने। चीने का मतलब हुंदा है लभना बुझना रियलाइज करना। कहते हैं जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। कहते अपना आपा चीने तो बिना अपना आपा लभन तो बिना जो भ्रम है जो इल्यूजन है वो कहते थोड़ी जिंदगी चो जा नहीं सकता। अगर ये रियलिटी है कि असी इल्यूजन च रह रहे हाँ जस्ट इमेजिन कि वो कितनी ट्रेजिक सिचुएशन है कि असी इल्यूजन च रह रहे। इतना ही सोच के इंसान नु काफी दर्द होंगी कि असी इल्यूजन च अते गुरु बाबा जी आखते हैं सारा जगत ही इल्यूजन दे विच है। हर शख्स इल्यूजन दे विच है और इल्यूजन दे विच जो जो जो है उसनु नहीं कही जा रहा जो नहीं है उसनु है कही जा रहा जो मेरा नहीं है उसनु मेरा कही जा रहा है। गुरु महाराज जी ने इस उत्ते बहुत खूबसूरत एक विस्तार दे नाल शब्द लिखे है। धन गुरु नानक देव जी ने कहते हैं खोटे को खरा कहे बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड विच इज इल्यूजनरी। कहते हैं खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने अंधे का नाव पारखू। जड़ा इंसान बिल्कुल ही अन्ना है ना अभी समझते बड़ा सियाना है ये इल्यूजन है। अंधे का नाव पारखू कली काल विडाने सूते को जागत कहे जागत को सूता। सब कुछ उल्ट क्योंकि भ्रम है इल्यूजन है एक वहम है। सूते को जागत कहे जागत को सूता जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता। आवत को जाता कहे जाते को आया परकी को अपनी कहे अपनो नहीं पाया। मीठे को कड़ुआ कहे कौड़े को मीठा। राते की निंदा करे जेड़ा रब दे रंग अंदर रत्या पिया है उसकी निंदा करता है ऐसा कल मैं दीठा। कल जुच कहते इस तरह देखा राते की निंदा करे ऐसा कल मैं दीठा। चेरी की सेवा करे माया अकाल पुरख की चेरी है उसकी ये सेवा करता है उसकी पूजा करता है। ठाकुर नहीं दिसे पोखर नीर विरोलिए माखन नहीं रीसे। पोखर यानी छप्पड़ छप्पड़ दे पानी नू रिड़ के मक्खन कढ़ना चाहता है भाव इना पदार्थां दे विच्चों सुख कढ़ना चाहता है। पदार्थां दे विच्चों शरीरक सुखां दे पदार्थ जो हैं उना दे विच्चों माया दे विच्चों ए अपनी तसल्ली चाहता है जो कि हुंदी नहीं। जेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसे पोखर नीर विरोलिए माखन नहीं रीसे। कहते हैं इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा नानक चीने आपको सो अपर अपारा। अपने आप नु पहचानन दी चीनन दी गल चल रही है। कहते नानक चीने आपको
जो अपने आप नू चींदा है, बुझदा है, समझदा है, पहचानदा है, रियलाइज करदा है, सो अपर अपारा कहंदे हन। उस पुरुष की गति जड़ी है वह अपर अपार है, कहन सुन तो बाहर दी गल। उसकी महिमा जो है इतनी महान है कि वह अपार है। नानक चीने आपको सो अपर अपारा। तो जितनी देर तक इंसान अपने आप नू नहीं चीनदा, उतनी देर तक इंसान भरम च रहिंदा है। तो असी इथों ए अपने अंदर ख्याल लेके जाना है, जो कि बहुत वैल्यूएबल है, कि अगर असी अपने आप नू अज तक नहीं पहचानिया तो असी डेफिनेटली भरम च रह रहे हैं, इल्यूजन च रह रहे हैं। गुरु बाबा जी की बाणी के त्रैकाल सत है ना, कहते हैं जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना परम की काई। कहते ए परम जो है ए नहीं मिट सकता जितनी देर तक तुसी अपना आपा नहीं चीन दे। और जितनी देर तक परम नहीं मुकदा, परम नहीं मिटदा, उतनी देर तक कोई भी इंसान जन्म मरण चो, बीमारियां चो, विछोड़े चो, खुशी गमी चो, दुखा सुखा चो, सोगा रोगा चो मुक्त नहीं हो सकता। कहते हैं जब लग टूटे ना ही मन परमा, जब लग टूटे ना ही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई। उदों तक कोई भी इंसान मुक्त नहीं है, ओ तमाम किस्म के बंधना दे विच है। गुरु बाबा जी कहते हैं जब लग टूटे ना ही मन परमा, जदों तक मन का परम नहीं टूट जाता, जो है वो नजर नहीं आ जाता, असलियत रियलिटी ट्रूथ जो वो नहीं जान जाता। महाराज तो यह भी आखते हैं कि उसनु मूर्ख भी आख्या जा सकता। मूर्ख सच ना जाने ही आसा दे वारिस लिखे है ना, मूर्ख सच ना जाने, सच नहीं जानता कि है कि जिस तरह रात का समा होवे, एक रस्सी पई होवे, एक इंसान डरी जाए कि सप पिया है मेरे च, उसनु सप नजर आ गए, वो भरम है, वो रियलिटी नहीं है, वो असलियत नहीं है। जितनी देर तक वो असलियत नु नहीं जान दिंदा कि है कि, उतनी देर तक कहते हैं मूर्खता ही जीवन है। मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आ, उस तक आना जरा कोई सफला नहीं हो। तो कहते हैं जब लग टूटे ना ही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई। जितनी देर तक परम नहीं टूट जाता, उतनी देर तक कोई मुक्त नहीं हो सकता। और जितनी देर तक आपा नहीं चीनदे, उतनी देर तक परम नहीं टूट सकता। तो यह साड़ी कल दी विचार सी। गुरु महाराज जी आखदे चाहे कोई उदासी है, चाहे कोई दृष्टि है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया च रहिंदा है, चाहे कोई अमेरिका च रहिंदा है, चाहे कोई इंडिया च रहिंदा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बहुत सक्सेसफुल है, चाहे अनसक्सेसफुल है, मेरी नजर दे विच कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। मैनूं तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं लगदा, क्योंकि अगर मनमुखी जन्म गवाया ही होना है तो महाराज कहते विच दुनिया काहे आया, तो फिर सक्सेस का भी हो। अगर असि अखीर च अपना जीवन जो है हार के ही जा रहे हैं, तो फिर सक्सेस किस चीज की हुई। सक्सेसफुल तो वो है जो इस मनुखा जन्म दे विच आके जो रियलाइज करना सी उसनु रियलाइज करके जा रहा है, वो सक्सेसफुल। क्योंकि बाबा जी ने आख्या है सब जग हारे सो जिने
गुर शब्द विचारा सारा जगत हार के जाता है। क्योंकि कई बंदियां जिंदगी ऐसा हो जाता है कि मेरी जिंदगी पता नहीं मैं अनसक्सेसफुल रह गया और देखो कितने सक्सेसफुल हैं, कितने कामयाब हैं, कितने खुश हैं, कितने अपने नालों बधेरे ज्यादा हो सक्सेसफुल लगते हैं। सिर्फ रिलेटिव टर्म है, लेकिन गुरु बाबा जी ये आखते हैं सब जग हारे, सारा जगत ही हार के जा रहे, कोई भी तो सक्सेसफुल नहीं जा रहे। वो करोड़ा चो एक अद है जो गुरु के शब्द की विचार नाल अपने आपे नू पहचानदा। सो विचार हुण चली है अज अपने आपे नू पहचानन दी। ओयो ही दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, ओयो ही उदासी पूर्ण उदासी है। इट मेक्स नो डिफरेंस कि तुसी उदासी हो या दृष्टि हो। सवाल इस चीज का है कि तुसी अपने आपे नू पहचानिया जा नहीं पहचानिया, उसनू पहचानन दे वास्ते एफर्ट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसनू पहचानन दी विधि ढंग टेक्निक्स तुहानू आंदी है या नहीं आंदी। सो अज दे कीर्तन तो जितने कीर्तनगा होंगे वो इस चीज ते होंगे कि आपा किवें पहचानिया जांदा है, किवें पहचानिया जांदा है, आपा पहचानने लिए किस किस चीज की जरूरत है। उन्होंने एलीमेंट्स दे विचों एक भी अगर मिसिंग होएगा आपा पहचानिया नहीं जाएगा। क्योंकि वो जो टेक्निक्स है वो उन्हां दियां बनाईयां होईयां हन जो जानते हैं कि आपा किवें पहचानिया जाता है, जो पहचान चुके हैं उन्हां दा रस्ता दस्या होया है। ये गुरु बाबा नानक देव जी का रस्ता दस्या होया है अपना आपा किवें पहचानिंदा है, जो आप अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का स्वरूप सन। क्योंकि उही दस सकता है ना। अज की दुनिया च बहुत लोग दसन की कोशिश करते हैं आपा पहचानन दी, सैल्फ रियलाइजेशन दी बड़ियां किताबां मिलदियां हैं, पर अखीर दे विच जाके वो ये नहीं दस पाते कि आपा पहचानना किवें है। तो आओ उस विचार नूं आरंभ करन दे वास्ते अज दास ने यह शब्द चुनिया है। भगत कबीर जी अपने गुरु दे पास, गुरुदेव दे पास एक बहुत वड्डा अपना मसला लैके आंदे हैं, एक समस्या लैके आंदे हैं, एक सवाल लैके आंदे हैं, जो कि सवाल असां परसों चौथ दे कीर्तन दे विच उठाए कि इंसान दी जिंदगी च मौत खुली पई है, जन्म मरण दे गेट दी इस नूं सोझी नहीं है, जमा दे ए वस पैंदा है क्योंकि बेहोश है परम दे विच, लेकिन जिस नूं सोझी आ गई है उस दे वास्ते जो जिंदगी है उस दे विच उपरामता आ जाती है। मौत दी याद उपरामता लियांदी है, मौत दा ख्याल साडे बने बनाए एक शीश महल नूं तोड़दा है, मौत दा जिक्र जो है साडे उत्ते हथौड़े दी तरह पैंदा है अते ओ चित नूं उदास करदा है। इस करके असीं उस नूं अवॉयड ही करदे, अवॉयड ही करदे उस ख्याल। लेकिन गुरुआं दी जो शिक्षा है वो कहंदे हन अगर उस नूं ना याद करोगे ते तुहाडा न्यू नहीं टुटेगा, उदासी नहीं पैदा होएगी। कबीर साहब का एक श्लोक है ना, कबीर हाड़ जरे ज्यो लाकरी, केस जरे ज्यो घास। कहिंदे जदों मैं बंदे दी ये दशा देखदा, हाड़ जरे ज्यो लाकरी, केस जरे ज्यो घास, ए जग जलता देख के कहो कबीर उदास। कहिंदे मैं उदास हो जाना हां कि इंसान दा अखीर दे विच आ हशर हुंदा। लकड़ी की तरह हड्डियां जलदियां हैं, घास की तरह इसके केस जलते हैं, बस आही है इसका अंत, आही है इसकी कहानी। कहिंदे ये देख के फिर मैं उदास हो जाना हां। इस करके
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਅਗਾਂਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੀਰਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਵਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਪੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੋ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਪਰਪਸਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਵੈਰਾਗ

गुरु आखदा है मरना कबूल कर जीवन दी आस छड हो सबना की रेणका सारयां दे चरणा दी तूड़ी बन इतना मिट तौ आओ हमारे पास ता जाके तू मेरे पास आई ता मैं तेरी गल सुननू तैयार हां ता मैं तेनू एक्सेप्ट करनू तैयार हां अगर तू पूरी दी पूरी तरह अपनी मौत कबूल करे मौत कबूल करन तो भाव ए है कि मेरे पास जब तू आएगा उदो तेरी कोई हस्ती नहीं है तेरी कोई होंद नहीं है जो मैं आखा वो तेनू करना पेगा उथे तू अपना ज्ञान अपना नॉलेज अपनी मत अपनी मर्जी वो बिल्कुल नहीं लिया सकता तो जो साड़ी ना मर्जी चले ना साड़ी मत चले ना साड़ा ज्ञान चले ना साड़ी इच्छा चले उदो असी मर नहीं गए तो होर की हो गया इंसान उदो मर जाता है इट इज इक्विवेलेंट टू डेथ बेसिकली क्योंकि इंसान गुरु दे सामने जाके गुलाम हो जाता है और महाराज जी कहते ने इस तो बिना यह ऑपरेशन नहीं हो सकता इस तो बिना यह कारज नहीं हो सकता आपा चीनन दा जितनी देर तक तू अपनी मौत कबूल नहीं कर लेंदा मौत यानी अपने एक परम दे विच जो अपनी हस्ती बनाई हुई है कि मैं आ हां जितनी देर तक उस हस्ती की मौत कबूल नहीं कर लेंदा महाराज जी कहते हैं मैं तेनू एक्सैप्ट नहीं कर सकता तू साडे पास आ ही नहीं सकता उथे तेरी इच्छा नहीं चलनी तेनू कुछ भी आखिया जाए तू कहे कि यह सत्कार वाले लफज नहीं कहे तू गिजया होया है सत्कार वाले लफज सुनने हो सकता है तेनू जलील ही कर दिता जाए गुरु कुछ भी कर सकता है उसनू पता है की रिक्वायरमेंट है की रिक्वायर्ड है किस चीज की जरूरत है तेनू अपनी यह जी आइडेंटिटी है इस दे नाल बहुत प्यार है इस दे नाल बहुत प्यार है गुरु मे चेंज दैट यू मे नॉट लाइक दैट पर तेरे पास अथॉरिटी नहीं है ना करन दी ये गुरु की मर्जी है क्योंकि गुरु ने उस चीज नू तोड़ना है जिस जिस चीज दे नाल तेरा बहुत गहरा प्यार बन चुका है न्यू बन चुका है अपनी आइडेंटिटी दे नाल पर्सनैलिटी दे नाल हर इंसान दा इतना प्यार हुंदा है कि उसनू को कहे ना कि तू अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ले कदे कोई करन नू तैयार नहीं होए गुरु नू ये अथॉरिटी गुरु पास ये अथॉरिटी है क्योंकि जो जरूरतमंद गया है गुरु जबरदस्ती किसी नू नहीं बुलांदा है हां वैरागी उदासी जग्यासु क्वेस्ट दे विच आपा लभण दे वास्ते दुखां दा मारिया जन्म मरण चो मुक्त होण दे वास्ते जांदा है गुरु कहिंदा तेरा ए कार्ज मैं कर सकदा हां पर तेनू पूरे दा पूरा सरेंडर करना पएगा अपने आप पूरे दा पूरा सरेंडर करना पएगा अगर तू ओ करन नू तैयार है ते मैं तेरी मदद करन नू तैयार हां बाणी दे विच एक बहुत प्यारा शब्द आंदा है गुरु महाराज जी आखदे हन सतगुर मिले जदों इस टूंड दे विच असी सतगुरु नू मिलदे हां तो पहला कम की हुंदा है सतगुर मिले सतगुरु नू मिलके सतगुरु नू मिलदिआं सार सो मरण दिखाए ओ एक मौत दिखालदा है कि इस चीज दी मौत करनी पैणी तेरे पास ज्ञान बहुत है ओदी भी मौत करनी पैणी है क्योंकि अगर असी कुछ कहांगे तू कहेगा जी मैनू भी पता है मैं भी जानता हां मैं इदां पढ़िया है मैं इदां सुनिया है फिर तेरी मैं तो उत्थे दी उत्थे रही फिर असी मारिया किस चीज फिर तेनू अपना ज्ञान भी छोड़ना पएगा जो कि सब तो ज्यादा मुश्किल गल है मैं अपने जीवन दे विच अपने कीर्तन दे दौरियां दे उत्ते ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ
गुरु महाराज जी आखते हैं इथे तेरा ज्ञान भी नहीं चलेगा, मौत दिखा दे हन कि तेरी टोटल मौत हो जाएगी। सतगुरु मिले, सतगुरु नु मिलना आ हुंदा है, बड़ी अजीब एक मिलनी है। सतगुरु मिले सुमरण दिखाए, एक खास किस्म का मरना दिखा दे हन कि एना एना चीजा की मौत सानू करनी पैनी है, तू कंसेंट साइन करना है या नहीं, तेनू कंसेंट साइन करनी पेगी, तेनू साडे नाल सहमत होना पेगा। अगर तू ये करने तैयार है तो फिर आपा चीनण दा काम हो सकता है। सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर पाए, गगन निवार गगनपुर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए। गर्भ निवार के हंकार नू, गर्भ दा अर्थ हंकार, कहिंदे हंकार तेरा तोड़ के फिर तेनू गगनपुरी जो अकाल पुरख वाहिगुरु का देश है उस पुरी का निवासी तेनू बनाया जा सकता है। पर एक गल तेनू मंजूर करनी पेगी, हां करनी पेगी, आपा चीनण दे वास्ते तेरी होमे नू मारना पेगा। तेरी होमे दे विच ही तेरा मन है, होमे दे विच ही तेरिया ख्वाहिशां हन, इच्छावां हन, होमे दे विच ही तेरी सुख अते दुख की लालसा है, खुशी अते गमी है, होमे विच ही तेरी हार जित है, होमे करके तेरे जन्म मरन हन। गुरु बाबा जी आख दिन तेरी होमे नू सानू मारना पेगा। अगर तू उस मौत नू कबूल करना है तो फिर असी तेरा आपा चीनण दा काम जो है वो कर सकते हैं। समा समाप्त है, इस आपा चीनण दी जो विचार है अगले कीर्तना दे विच हुण चलदी रहेगी कि आपा किवें चीनिया जांदा है, गुरु महाराज सिख दे नाल की करदे हन आपा चीनण दे वास्ते। तो सब तो पहली चीज अज असी जो सुनिया है, भगत कबीर जी आए हन ए सवाल लैके कि मैनू मुक्ति दियो। कहिंदे हन मुक्ति तां मिलनी है जदों तेरा भरम टुटेगा, भरम टुटे तो बिना तेनू मुक्ति नहीं मिलनी। जब लग टूटे ना ही मन भरम तब लग मुक्त ना कोई, उतनी देर तक मुक्ति नहीं होनी। और जो तू अपने आप नू समझदा है कि मैं आ हां वो भी तेरा भरम है, तू सोचता है मैनू एना चीजा का ज्ञान है वह भी तेनू भरम है, तेनू किसी चीज का ज्ञान नहीं है। तू सोचता है मैं बहुत वड्डा हां यह भी तेनू भरम है, तू सोचता मैं बहुत खूबसूरत हां यह भी तेनू भरम है, तू सोचता है कि मैं जमदा हां मरदा हां यह भी तेनू भरम है। दरअसल जो तू है उसका तेनू पता ही नहीं है, वह तू एक अपने आप की आप ही होंद बनाई हुई है, उसनू संभालदा फिरदा है, उसनू बचांदा फिरदा है, उसनू दुखी अते सुखी पाना है। कहिंदे उस होमे दी उस सूडो सेल्फ दी सानू मौत करनी पैनी है। किवें ओ मौत करदे हन अते किवें ओ सूडो सेल्फ नू निकाल के मार के निकाल के तो असलियत जो है वह दिखालदे हन, वह असी अगले कीर्तना दे विच विचारांगे। बहुत खूबसूरत और डूंगी विचार चल रही है, प्रेम दे नाल आओ सारे दर्शन दियो गुरु बाबा जी दे चरणा दे विच, ताकि असी महाराज जी की जो बहुत गहरी आत्मक साइंस है जो कि जीवन का मनोरथ है आपा लभण दा, उसनू असी समझ सकीए जान सकीए, फिर जो कुछ उस लिए करना पाएगा वी विल कम टू दैट टू। कीर्तना दे विच असी इस विचार नू पूरी कंकलूड करांगे कि आपा पहचानण लई की कुछ करना पैंदा है, किवें हुंदा है। तो ओ महाराज बख्शिश कर, आप समय से रहो और नानू भी लियाओ, प्रेम नाल इस शब्द की पंक्ति गाओ जिमें कबीर जी आए हैं, अपने दिल च भी ऐसी जो जिज्ञासा ते एक चाहत पैदा करो कि गुरुदेव मैं भी तेरे चरणा दे नाल लग के बेनती करदा हां कि मैनू भी दसो मैं कौन हां, मेरी असलियत मैनू समझाओ मैं कौन हां।

राग भी बिहागड़ा ही आप जी ने सरुण कीता है। एक बंदिश रीत जो है पुरातन मान योग सत्कार जो कि साडे पिता जी गायन करदे ने, तो आओ इस रीत राग बिहागदी है, हुणे याद आई है, आओ बड़े प्यार नाल सरुण करो।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चों नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चों पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच दोस्तां विच घर दे नौकरां चाकरां नाल दा समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकंगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकंगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकंगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असि तो उस ताते का सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हाँ। जे कुछ ऊंट आई है तो ध्यान दियो ते पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चों पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तो सिखी का मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी का धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असि तो अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हाँ। जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया तो मुगल राज का समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छा दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नान खार प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

वक्त ते सुल फाग भी चाहेगा, दूसरी बारी तीन ताल ते सुल फाग भी चाह के फिर इसका स्थाई देते मुका होगा। इसका यह भी लय जी है एक दूसरे के नाल मिलनी चाहिए है, पड़ताल विच एक खास विशेषता होंगी है।